और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, फिर तुमको मारता है, फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर एक उम्मत के लिए बंदगी की एक राह मुकर्रर कर दी है कि उसी तरह वो बंदगी करते हैं, तो ये लोग तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करें, और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में कयामत के रोज उनका फैसला कर देगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है? ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, बेशक ये सब अल्लाह को आसान है।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो प्यार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372-0242-460100।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ
5: 93 FM 94
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذكر ربك في نفسك اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور بغیر اونچی آواز کے، صبح اور شام اور غفلت

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: जो असीम सरमायो आवाम ऐं इतिहाद आहे असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते हलंदा रहंदासीं।
2: ईरान सां मामला बहितरीन अंदाज में अॻिते वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी फ़ौज अस्करी मैदान में ईरान खे शिकस्त ॾिनी आहे। तेहरान कॾहिं बि एटमी हथियार ठाहे न सघंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिकी फ़ौज वेनेज़ुएला में बहितरीन हाणे बि दुनिया जी बहितरीन फ़ौज आहे।

0: धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ची चयो त मुआहिदे जी शिक नंबर 13 वाज़ी आहे त धमकियुनि जी सूरत में ॻाल्हियूं न थी सघंदियूं। हुन खां अॻु अमरीकी सदर ट्रम्प चयो हो त अमरीका ईरान सां मुआहिदो कंदो या ईरान खे ख़तम करे छॾींदो।
1: हमास 20 सालनि बाद गज़ा जे हुकूमत खां धार थी वई। गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदे बाडी टोड़ण जो ऐलान हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडीअ खे टोड़े छॾियो आहे। सिविल इंतज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करण न आहे। गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोगी शख़्स हवाले कयो वेंदो।

0: सिंध हाईकोर्ट पेट्रोलियम शयुनि जी कीमत तय करण जे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त न ॿुधण जोगी करार ॾींदे रद्द करे छॾी। अदालत चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघ मुक़रर करण जो इख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे, सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते अदम एतमाद आइनी दरख़्वास्त जो जवाब नथो बणिजे।
1: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फोतियल कैदी जो लाश रखी धरणो। फोतियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जो वारसन लाश नसरपुर टंडोलयार रोड ते रखी धरणो हयो। वारसन चयो त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनी था कूड़े केस में फासाए ॿारियो आहे। जेसिताईं ग्रुप जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा तेसिताईं असां लाश दफ़न न कंदासीं।

0: ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੈਨਲ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੇਤਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਥਿਆ ਹਨ
1: ऐं स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पंहिंजे आख़िरी वर्ल्ड कप खे यादगार न बणाए सघियो। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल खे क्वार्टर फाइनल में पहुचणु, क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल खे शिकस्त ॾेई स्पेन जे मेकाल मेरिनियो हिकु गोल करे टीम खे कामयाबी ॾियारी।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385769
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2 0242460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
7: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेहराबपुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहराबपुर।
8: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301399-2836।
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
11: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है।

0: चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम। यू आर शुनिंग टू जियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज।
1: ये माना के आँखों में
0: मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। रिव्यू कैसे हैं आप? आई होप सो कि जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल ट्विटर सर्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तो लोग ही घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट एट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजले खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलू।

गया मैं हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सब करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 196 8051।

اوکے جی اللہ حافظ. تھینک یو. اور یہ رہا گانا.

0: जीए सक्कर एफएम 88
1: सक्कर की आवाज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GFM 94।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे कि कॉलर कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन.
0: नूर हुसैन, तो नहीं, फ्रॉम बदीन. कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: आपका नेट पे शोर नहीं आ रहा उससे सर?
0: नेट पे नहीं आ रहा, कैसे सुन रहे हैं फिर आप?
1: रेडियो फैन पे.
0: रेडियो से सुन रहे हैं, चलें फिर तो बहुत जबरदस्त बात है. गाना कौन सा सुना रहे हैं
1: हमें?
0: लगे तो प्यार जी काबिल. चले मैं प्ले करती हूँ, किसी को डेडिकेट करना है.
1: खालिद बिन साहब, हाल हाल विशाल, तमाम
0: जनाब. ओके जी, मैं अभी प्ले करती हूँ जी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और गाना प्ले करने जा रहे हैं हम, एंड ये रहा गाना.

ओके जी, आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह से है कि काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया. ठीक है, काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया, ये कहना है. ठीक है, ये कहेंगे और ये कहने की प्रैक्टिस करेंगे. अगला जो हमारा सेगमेंट होने वाला है डैजेस बोलो तो माने, उसमें हम ये टंग ट्विस्टर आपसे ये सुन रहे होंगे, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. हम जाएंगे न्यूज ब्रेक, फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में अहम मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी।
1: सेंधा खोड पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतूं तय करण वारे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघ मुक़ररु करण जो अख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे। सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते अदम एतमाद आइनी नथो बणिजे।

0: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फौत थियल कैदीन जे वारसन जो लाश रखी धरणो। फौत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर जे वारसन टंडोलिया रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवण आहे त असांजे हमराह खे फारूक टालपुर ऐं ॿियनि दुश्मनी तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383 5769 0300 3883 8559।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप 1.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
5: असलाम अलैकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे हैं जो कि आप कर भी सकते हैं. एंड हम चलेंगे आगे. एंड साथ साथ हम आज का जो सेगमेंट है

आज का टंग ट्विस्टर जो कि आपको कह के दिखाना है वो है जी, काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया, ठीक है, ये कहना है. और जब आप ये कहेंगे ना तो जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा जी इस सेगमेंट को, ठीक है. और इसके अलावा जी 03000111348

इसके ऊपर कॉल करेंगे और सेगमेंट की फर्स्ट कॉल लेंगे. और ये फर्स्ट कॉल हो चुकी है जी हैंग, सो इसको हम हैंग होने नहीं देंगे. आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं 888 पे, और कमेंट्स आप लोगों के बहुत सारे मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, सबको इंक्लूड करेंगे, ठीक है. और इसके अलावा आज का टंग टेस्ट है. काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया, ठीक है जी, ये गया.

0: ओके जी, सो कॉलर्स को हम रिसीव करेंगे जी 03000113488. काशान ने कबाब के साथ किचुमर खाया, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग और ये कहेंगे और देखते हैं कि कौन आता है जी कॉलर फर्स्ट इस सेगमेंट का. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आप कैसे हैं?
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: जी मैं वकार जतो लड़का नाम है.
0: वकार जतोई भाई कैसे? ठीक ठाक. मैं बहुत अच्छी. मुझे बताइएगा टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे.
1: सर मैंने नहीं सुना, आप सुनाए.
0: ओके, आपने कहना है कि काशान ने कबाब के साथ किचुमर खाया. काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया.
1: काशान ने कचान के साथ कचूमर खाया. काशान ने कचान के साथ
0: कचान नहीं. आप सुनाओ पाएगा और कुछ?
1: और ये कल बेस्ट वाला प्रोग्राम आपने नहीं किया.
0: अब वो असल में खत्म हो चुका है. मैंने लास्ट किया था ना सैटरडे को, उसमें मैंने अनाउंस किया था कि वो लास्ट प्रोग्राम है.
1: क्या आप दोबारा किएगा?
0: हाँ, अभी पॉसिबल है कि कुछ दिन बाद या कुछ मंथ्स बाद दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है वो प्रोग्राम क्लोज हो चुका है.
1: मेरे प्यारे एकड़ा शो यो असा दु बधाई शो करे जी आ के शो बधाई रे भाई शो बंद कर दो यार मार छोड़ेंगे.
0: दो अढ़ाई ये दो घंटे शो करती तो हूँ मैं.
1: मैं शो बिल्कुल सीन यार एकड़ो शो आता जो मना दो सा निकली हो.
0: ओके चले मे बी ठीक है जी, थैंक यू सो मच. मे बी कुछ टाइम बाद वो शुरू हो जाए दोबारा से. 03000113488 के ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. ओके जी, नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: जी सर दर्द बात कर रही.
0: सर दर्द कैसी हो? चहकती चहकती आई हो आज.
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए.
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताएं टंग ट्विस्टर सुना भूलेंगी.
2: काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया, यही है?
0: एग्जैक्टली यही है.
2: काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान ने कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब कचूमर खाया. काशान कबाब कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर खाया. काशान कबाब के साथ कचूमर.
0: ओके स्टॉप. ओके वेरी नाइस. कुछ और कहना है सर दर्द?
2: वैसे यार आपने तो बताया था ना कि सात बजे वाला प्रोग्राम नहीं है यार. कल मुझे याद नहीं है.
0: नहीं, सैटरडे वाले प्रोग्राम में मैंने अनाउंस कर दिया था कि आज हमारी लास्ट ट्रांसमिशन है.
2: जी मैं सुन भी रही थी लेकिन मुझे याद नहीं है. क्या करे, आदत हो गई ना आपके प्रोग्राम सुनने की. आप सारे दिन भी प्रोग्राम कहीं ना मैं सुनती रहूंगी. मैं
0: बोलूँ तो चले इंशाल्लाह मे भी दोबारा शुरू हो जाए प्रोग्राम, ठीक है. और अपना बहुत सारा ख्याल रखें सर दर्द. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. गाना प्ले करें गाना. सो गाना मैं नेक्स्ट प्ले करने जा रही हूँ एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे.

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाने पहिंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: 0300001348 ये हमारा कॉलिंग नंबर, साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस जो कि मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं. गुलाब लगारी गोट, बाशम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद, चाचा मंठार रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी कोनैन जहरा बाजी आपका शो सुन रहे हैं. मुमताज मोलाई का सॉन्ग सुनवाए, वाह जमाना तुंजा नमूना. आज इतने सैड सॉन्ग क्यों दिमाग में आ रहे हैं आप लोगों के, व्हाई? इसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम रुखसार, आपकी क्या हाल है? आप के काफी दिन बाद शो में शामिल हो रही हूँ. नाइस शो, आई एम रुखसार मरी. रुखसार मरी कैसे ही, ठीक ठाक परफेक्ट है? इतने दिन कहाँ गुम थी आप, ये हमें बताइएगा.
1: क्यों मेरी थमने लगी, कैसे तूने ऐसा किया, ना चाहते हुआ भी कहता गया मैं कोई तो रोको.
0: अच्छा कहते हैं छुट्टियां थी तो घूमने गए हुए थे, आपका शो नहीं सुन सके, कोई अच्छा सा ओएसटी सुनवा दे.
1: जो समझो
0: शुदाई ड्रामा ओएसटी, पहले आपने लिखा कोई अच्छा सा सुना दे, फिर आपने बताया भी है ये वाला सुना दे, अब क्या किया जाए? ओके, इसके साथ सर जी आशिक खास खेले कहते हैं कि पीस बी अपॉन यू आर जी एंड वेलकम, थैंक यू. रिहान खान भक्कर से हमें सुन रहे हैं.

0: और कॉलर से आज की अच्छी बात पूछ लेते हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. दुआ कवल, आज की अच्छी बात क्या है?
1: कोशिश करें कि अपनी हाथ से दूसरों को तकलीफ ना दे. ना आँख से, ना जुबान से और ना आँख से.
0: अरे वाह, क्या बात है.
1: नींद आ रही है, आपके जाने के इंतजार में रहती हूँ.
0: नींद आ रही है. कितनी गलत बात है. मतलब इंजॉय करना चाहिए. आपको नींद आती है? अभी मैं ऐसा गाने लगाती हूँ, नींद उड़ा के जाती हूँ आपकी. अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है. लेकिन लास्ट वाला गाना सुन के सोना है.
1: नहीं, मेरे पसंद का होना चाहिए.
0: आपको बहुत पसंद आएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. ये रहा आखिरी गाना जो कि मैंने प्ले

तो फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: वज़ीर-आज़म जी सदारत हेठ वफाकी काबिना जो इजलास अज थींदो। इजलास में अहम मामलन जी मंजूरी डिनी वेंदी।
1: सिंध हाई कोर्ट पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमत तय करण वारे तरीक़े बाबति दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। चयो त पेट्रोलियम शयुनि जा अघु मुक़ररु करण जो अख़्तियार हुकूमत ऐं पार्लियामेंट वटि आहे। सिर्फ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि ते इतमाद आइनी दरख़्वास्त जो जवाबु नथो बणिजी सघे।
0: खानपुर महर वेझो ॿ मासूम नींगरियूं वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत। ॻोठु इस्माइल पिताफ़ीअ में 10 वरियनि जी अजवा ऐं 8 वरियनि जी सबाणी पिताफ़ी ॿुॾी फोत थियूं।
1: तलहार में मीरबा केनाल में पाणी खोड़ ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख्य रोड ते धरणो। आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त सारनि जी पोखीअ जी मुंद शुरू थींदी आहे। पाशी मलदारनि पाणी बंदि करे छॾियो आहे। पाणी फराहम कयो वञे।
0: नसरपुर में मीरपुर ख़ास जेल में फोत थियल क़ैदी जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। फोत थियल क़ैदी मोहम्मद यूसुफ डारपुर जे वारसनि टंडोलिया रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवणु आहे त असांजे हमराह खे फारूक टालबर ऐं ॿियनि दुश्मनीअ तां कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
1: हैदराबाद में इंडस पहाड़ी भरिसां दुर्द शख़्स जो लाश इस्पताल मुंतकिल। इतलाह ते साइट पुलिस पहुची लाश तेवील में वठी इस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस ॿुधायो आहे त लाश 50 साल शख़्स जो लॻी रहियो आहे। सुञाणप न थी सघी। फोती जी फिंगरप्रिंट्स कराए डेटा नादरा ॾांहुं मणी वेंदी।
0: नारो वेझो महिमान थी आहे नौजवान खे कट सां ॿधी तशदुद वीडियो वायरल। ॻोठ अताउला तिहार में नौजवान कामरान जिस्कानीअ ते तशदुद कयो वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त नौजवान ठरी मीरवा जो रहवासी आहे जेको नसीब ला जिस्कानी वटि आयल हो। पुलिस मूजिबि मुतासिर नौजवान तोड़े संदसि वारिस मां केर बि थाणे ते नाहे आयो। वीडियो ॾिठी आहे। इल्ज़ाम हेठि आयलनि खे हथ करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे। मुतासिर ईंदा त केस दाख़िल करण बाद वधीक कार्रवाई कंदासीं।
1: रूस जो यूक्रेन जे गादी वारे शहर केव ते हमिलो 26 ॼणा मारिजी विया। परॾेही मीडिया चयो आहे त रूसी हमले में केतिरा ई माण्हू शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि। ऐं स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैरियर जे आख़िरी वर्ल्ड कप खे यादगार बणाइण में नाकाम। फीफा वर्ल्ड कप जे अहम मैच में स्पेन पोर्चुगाल खे शिकस्त ॾेई क्वार्टर फाइनल में पहुची वई। स्पेन टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगाल खे ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में गोल तां शिकस्त ॾिनी। एवन जे ॿिए मैच में बेल्जियम जी टीम मेज़बान मुल्क अमरीका जी टीम खे एवन खां ॿाहिरि कढी छॾियो। बेल्जियम जी टीम अमरीका खे 1 जे मुक़ाबले में 4 गोलनि तां शिकस्त ॾिनी।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती को हमेशा लॉक करना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है जनाब, जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या तरीकेकार है जिन्हें फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन, खूबसूरत और पुरकशिश भी बनते जाएंगे। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती किस तरह से बढ़ेगी और आपको किस तरह से मिलेगा, ये बातें इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताई जाएंगी। तो बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों से सुनेंगे। और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जनाब, रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ मौजूद रहने के लिए, प्रोग्राम में फन करने के लिए, प्रोग्राम में बातें करने के लिए और प्रोग्राम में अच्छी अच्छी वाली म्यूजिक कल जो है ना वो गाने सुनने के लिए भी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं और साथ ही साथ आप जो है ना वो अपने जरा हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे मेरी जान। और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले हैं। तो चलिए जनाब, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सब भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्र आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी, आगाज से प्रोग्राम करते हैं और आगाज से प्रोग्राम आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी नाद। प्रोग्राम के आगाज में नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन आ चुके आपने यहाँ पर सुनी जी। हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ताकि इसी तरह के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ बिल्कुल जी बताएंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनने वाले हैं, आप हमारे प्रोग्राम में कैसे हमें ज्वाइन करेंगे ये बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों का सवाल क्या होगा, यानी कि टॉपिक क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं, हर एक इंसान का ना एक डर होता है, जिससे ना वो इंसान जो है ना वो डरता है, हर एक ऐसी चीज होती है जिससे ना हमें डर लगता है। तो आज आप मुझे ये बताएंगे कि आपका जो डर है, जिस भी चीज से आप डरते हैं, जिस भी चीज का आपको फोबिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने फर्ज के लेना है कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आप जिस चीज से डरते हैं वो डर खत्म हो चुका है, तो आप क्या करने वाले हैं। हमारे आसपास जो ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है हमारी जिंदगी में जिससे ना हमें डर लगता है, और हम ये सोचते हैं कि अगर ये डर हमारे अंदर से खत्म हो जाए तो हम तो ये कुछ करेंगे वो कुछ करेंगे। तो बिल्कुल आज आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आप जिस चीज से डरते हैं, आपका जो डर है, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर आप सुबह उठे और आपका वो डर खत्म हो चुका हो, यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो, तो फिर आप क्या करने वाले हैं। ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। ओके जी, उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, जी ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जी ये लाड़काना FM 88.8 आप जो है ना वो सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। तो पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करने वाले हैं, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। जो नए नए लोग आते जा रहे हैं, कॉमेंट के साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दें, चलें शेयर नहीं करें तो लाइक तो कर दें इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती सच में। चलिए जी, और इसी के साथ साथ बताइए आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है, कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। और मैंने जो आज आप लोगों सवाल मैंने कुछ इस तरह आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज करें बहुत सारे लोगों के बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे ना उनको डर लगता है, तो मैंने आज आप लोगों से ये पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज करें कि आप जिस चीज से डरते हैं और आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि वो जो जिस चीज से आप डरते थे ना वो आपका डर खत्म हो चुका है, यानी कि अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, तो मुझे बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। और ऐसा नहीं बोलिएगा कि भाई असा की तो भो ही ना थी, हर इंसान जी ना एकड़ी कमजोरी जरूर होती अव कें ना कें शे का डिजन है, जैसे यो पुछो वो ना तो बाबा तुम कड़ी चीज का डिजन आड़ी शे आने महसूस कराइंदे तो बाबा इन शे का भो थे तो त कुछ माण जी भो हूँ ना जो डर हों वो बुधी कर खिल भी इन चीज का तक भो थी हाँ जी, मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ बातें, बिल्कुल जी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले हैं आप, और हमारे प्रोग्राम में आइए जी, रौनकों को बढ़ाते जाइए। और साथ ही साथ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मुझे ये भी जरूर बताते रहिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03 15 17

9905 ॿुड़ी 315 79 90 595. ओके जी, और यहाँ पर आदिल खान हमारे साथ मौजूद कहते हैं बेना मुझे तरफ का अवां के मंजन जो सलाम कबूल हुजे खुश आमदीद अवां के चौथा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम इन मुलाल सलाम अदर वासु भाई हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम उलर सलाम अदर मां ठीक आया पैरा भात आमदा की आयो खुश चंगा भला और फहीम कहते हैं गाना सुनाइएगा बिल्कुल आपको ये वाला गाना सुनाएंगे अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अब्दुल गफार चंद शहर शाहपुर चाकड़ ओके जी आपको खुश आमदीद कहा जाता है डॉक्टर साहब आदिल कहते हैं कि बेना शायरी आहे कांच के टुकड़े बनकर बिखर गई जिंदगी मेरे किसी ने अच्छा मेरी किसी ने समेटा भी नहीं हाथ जख्मी होने के डर से वाह वाह वाह वाह दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम जानी में ठीक हूँ आप बताएं आप कैसी हैं अब्दुल खालिक गबोल हमारे साथ हैं कहते हैं असावट क्रीम पहुची वो शायद ये था तव चो कोई सो क्रीम पहुंची वो तुम इस्तेमाल कजो ठीक है और कहते अदी कड़ा हाल तवजा अदा मा सफा भली आया अब्दुल खाले गबोल भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पे और अदील कहते हैं कि बेना अच गानों तो बुधाए जो अख बदली तेरा यार रोले आ ओके जी बिल्कुल तवा की यो गानो बुधराइंदा सी ए एम अंसारी हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कैफ हालुक या हबीबी मुझो हालक सफा भलो हां बताया कि आयो और हमारे साथी जी मौलाई मुजाहिद बोसदार अटूप टूसल से कहते हैं हाँ जी मां ठीक आया तां बुधाए कि आयो और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा आप ही नाइस जो थैंक यू एसन अरबाणी हमारे साथ मौजूद है एसन अरबाणी कहती है अस्सलाम वालेकुम असम ये ची वैसी सिद्रा चाला उम्मीद खुश हूं दो शाद हूं दो आबाद हूं दो न याद हूं दो नहीं विसरन दो बिल्कुल बिल्कुल जी को चौथा वो सफर सही है कहते असम भी कम करे छड़ा आयन लाइक कमेंट चलो डाडो भलो कयो थवे सफा वीआईपी सुधरल बार आयो और गुलाम मोहम्मद मरी कहती आई एम रुखसार मरी फ्रॉम मीरपुर खास ओके रुखसार मरी आपको खुश आमदीद कहते हैं जी इस प्यारे प्रोग्राम में और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनका इस्तेमाल करने वाली हैं अगर आपके एरिया में मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया नहीं मिल रहे तो आप को जो नंबर बता रही ना उसके ऊपर रब्ता जरूर कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते रहे अच्छा दादू खां अहमदाद जतोई हमारे साथ ही अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई किफायतुल्लाह जतोई तमाम भावन के जो था मोहब्बत प्रोग्राम बुध पया और ये मौजूद है सलाम सिस्टर कैसी हो जान मोहम्मद ब्रोही शमन का गाना सुनाइएगा डेडिकेटेड टू ऑल लिसनर्स बरकत महेसर थैंक यू ओके जी आपका भी थैंक यू आप हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया ओके फेसबुक वाले लोग जो है ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है जिस चीज से आपको हद से ज्यादा डर लगता है ठीक है और आप सुबह को उठ रहे हैं और आपको पता चलता है कि भाई आपका जो वो जो डर था ना वो खत्म हो चुका है तो आप क्या करेंगे हाँ जी ये एक बहुत अहम सी बात है जिसके ऊपर आपका क्या जवाब होगा मैं जानना चाहूंगी तो जल्दी से बताइए हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और ये भी बताइए कि आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम देखा जा रहा है तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने लगे हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं बिल्कुल यूं जाकर यूं वापस सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

0: जिए लाड़काना एफएम 88
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड में रापर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

ओके जी, आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपको जिस चीज से डर लगता है, ठीक है, उसको जहन में रखिए और मुझे ये बताइए आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, नींद से जाग रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि आपको जिस चीज से डर लगता था वो आपका डर खत्म हो चुका है, तो आप

0: रंग।
1: ओके जी, ये रुखसार मरी हमारे साथ है मीरपुर खास से, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्यारी। और किशोर भाई आ चुके हैं, हेलो अदा की आए हो, हाँ माँ सफा मजे में ताम उदा की आए हो। डॉक्टर अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं। अली रजा कलहोड़ो, सैयद गुलाम शाह, हफीज अली कलहोड़ो और सिस्टर अस्मा और भाई आजान भी आपके साथ मौजूद है। सब भाइयों को वेलकम करते हैं और बहनों को भी वेलकम करते हैं। और उसके अलावा है जी बख्तली सियाल भाई, हेलो कैसे हैं, वासा भाई आ चुके हैं, जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बीरन जखरानी भाई जेकब आवाज से हेलो।

ओके जी, क्या बात है। एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पर, डर हर उम्र में तब्दील होते जाते हैं। के जी बचपन में साइकिल ते स्कूल वींदे, कुतन जो खौफ रस्ते में। अच्छा जड़ी तवहां टीनेजर थिया त पोइ तव्हांखे बाइक ते किरण जो खौफ। भई मूंखे लॻंदो आहे छोकिरनि खे बाइक तां किरण जो खौफ न हूंदो। उन खां अलावा जेको अॻिते लिखियो अथव सही आहे, सही आहे, सही आहे। इन खां अलावा कहते अब डर है कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होगा। ये डर पीछा ही नहीं छोड़ता भाई, अब यही डर है कि लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होना पड़ेगा। एनी आइडिया टू प्लीज हेल्प मी। अच्छा इस मामले में मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि ये सारे जो डर आपने बताए हैं ना, ये मुझे भी है। अजीब सा फोबिया है। तो खैर इसके ऊपर थोड़ी बाद में बात करते हैं। और मोमना आ चुकी है, प्यारी मोमना। हेलो सिद्रा, मैं मोमना वैसे आपका शो सुनती थी, आज आपके शो में शामिल भी हो गई हूँ। नाइस शो, क्या बात है प्यारी मोमना, आपको खुश आमदीद कहते हैं भलीकार। और मुजाहिद बोजार कहते हैं सिडोरी टॉपिक। अच्छा कहते हैं मर्द खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता, मेरे ख्याल में मर्द को डरना नहीं चाहिए। आपने सुना होगा जो डरेगा वो मरेगा, क्या बोलती तू ना पापा, मर्द के भी लगन डर या कंजी गाला। ओके जी, सो हाँ जी, रुखसार ने शायद इस गाने की फरमाइश कर दी हमें। मैं वही सोच रही थी कि किसने फरमाइश करी थी। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, और बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एश लवली क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, सोप है, फेस वॉश है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताया करें, बताया करें। अच्छा चाचा खाले जुड़ी जो भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम चाचा, छाला तांजो खुश आयो। मोमना कहती हैं कि टॉपिक सिद्रा, मैं नहीं डरती अपने अल्लाह के सिवा क्योंकि मैं ब्रेव हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक बुधो को ना, पर कॉमेंट्स में अंदाजो लगी वो जवाब दिया थो, बचपन में माणुन खां भो थींदो हो, अज भी माणुन खां भो थींदो आ, बाकी मानी खावां थो त थाव कोन। अच्छा ढो कोन थींदो आहे, मानी खाधो त ढो कोन थींदो आहे, इहो छा असां त थोरी खाऊं त ढो थी वञे थो। तव्हांखे डॉक्टर खे ॾेखारियो, ठीकु आहे, हू तव्हांखे का दवाई ॾींदो जंहिंसां तव्हांजो जेको आहे न सिस्टम थोरो सही थी वेंदो। और फहीम शेख छा था चओ सिद्रा, कहते हैं आप कौन सी क्रीम यूज करती हो वो भी तो बताओ। मैं भाई सच्ची वाली बात बताऊं, व्हाइट एश लवली क्रीम का मैं इस्तेमाल करती हूं, और व्हाइट एश लवली क्रीम मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे दिल चवंदो आहे राति जेके माण्हू वञनि था ना उन्हनि सभिनी खे पकड़े पकड़े चवंदा बाबा व्हाइट एश लवली क्रीम वञो। अला मतलब हिकड़ा माण्हू हूंदा आहिनि, अगरि उन्हनि खे कुझु बि फ़ाइदो मिलंदो आहे न कहिड़ी बि चीज़ मां, त हू माण्हुनि खां लिकाईंदा आहिनि, पर मां वरी उहो माण्हू आहियां, अगरि मूंखे किथां बि कोई बि फ़ाइदो मिलंदो आहे मां वरी सभिनी माण्हुनि खे ॿुधाईंदी आहियां। सो बिल्कुल तव्हां बि इस्तेमालु कयो, अगरि तव्हांजी स्किन सेंसिटिव बि आहे ऐं तव्हां रेग्यूलर डेली बेसिस ते कोई कमु कयो था ऐं तव्हांखे मेकअप बि करिणो आहे पर तव्हां मेकअप नथा करे सघो छो त गर्मी सफ़ा घणी थी वई आहे, त तव्हां व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु सफ़ा वी आई पी अथव बाबा, तव्हां हीअं चुटकी वॼाईंदा तव्हां रेडी हूंदा। सो व्हाइट एश लवली क्रीम तव्हां सभु लॻाए सघो था।

अनवर भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। गुलन के ॾिसी ख़बर पई त साईं माण्हू टोड़ींदा बि उन्हनि खे आहिनि जेके सुठा हुजनि। वाह वाह वाह वाह। मोहम्मद समान भाई आ चुके हैं, वेलकम बुआ जी। अपना भी अटेंडेंस लगा दें इस शो में, हम भी आपके साथ साथ हैं। ओके जी, खुशामदीद कहते हैं हमारे प्यारे भाई जान को। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, ग्रेट होस्टिंग में मार्जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जिन लोगों ने पोस्ट को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दें भाई जान, टाइम थोड़ा होता है हमारे पास। चंद्र कर चांद्रो।

अच्छा किशोर भाई बस यो प्रोग्राम रहला शाह खबर मता यो भी करे बैठू अनवर भाई के दे मां लिसनर्स जा कमेंट बुद्धी समझी विंदो आ टॉपिक केड़ो आ है हां देसो केड़ा इंटेलिजेंट मानु आ मुझे प्रोग्राम में और निदड़ी आ चुकी हेलो हेलो मैं भी आ गई वेलकम टू शो प्यारी खुशामदीद हमारी प्यारी जानी और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं क्रीम बेहतरीन आ सॉन्ग बुधरा जो शमन जो शमन हलाई था बिल्कुल भाज लाए मोहब्बतू प्रोग्राम बुधो पया मोहम्मद समान कहते हैं आज असा वट नेटवर्क सफा खराब लगो पया बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क खराब आए वाकई मतां जी गाल ऐसा सहमत आया चाचा खालिद कहते हैं व्हाइटिश लवली क्रीम अगर अधूरी जिंदगी मुकम्मल कर देगी तो आपके कहने पर ले लेते हैं बिल्कुल लीजिएगा निदड़ी कहती पबजी मोबाइल में बिजी थी आज लेट हो गई मैं भाई ये कदा तो के नया नया शौक पैदा थे आए वो भी एड़ा अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे तो जिनों से डर लगता है बट अब वो डर खत्म हो गया है और यो टॉपिक आंसर छा चाचा किड़ी गाल था कयो वडा थी व्या पो जिनन का जिनो आई छलो दे मु आई नी आहे सोनारा भलो पजे यार खेरी अदील कहते हैं मुखे डर तवा खा थिंदो आहे मुखा जो मा जिनड़ी है जा भला और फहीम कहते हैं टॉपिक मुझको डर स्नेक से लगता था लेकिन वो भी अब खत्म हो गया है अब डर सिर्फ बिजली से लगता है अच्छा बिजली के बिल से तो नहीं ना या उससे ज्यादा लगता है और उसके अलावा अनवर भाई कहते हैं जो डर गया वो मर गया ना बाबा एड़ी बिगाल को निकाय सिर्फ डायलॉग आए मूवी जो रियलिटी थोड़ी चेंज आ चंद्र कर चांदों की बंध में आ प्यारो ओके सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए आपके ऑल स्किन टाइप के लिए है सब मानू हणी सगन था सब कोई सोनो थे बाबा मां तो ये चाहिए थी सो हाँ टाइम थी न्यूज ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी जल्दी तुमने मोटी जूं था तुम करी ने मुझे बैठा हो जो मैं ओ ही वनी ओ ही वोटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध काबीना सूबे में कणक जेतिरा खोट ऐं अटे जे अघ में वाध जो नोटिस वरितो। वॾे वज़ीर जो कणक ज़खीरो करणु ऐं अटो महा विकिरो करणु ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुकुम। वॾे वज़ीर इमरान अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। खुराक खाते में इंटीग्रेट वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ़ करण जो फ़ैसिलो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो आहे सिंध कलंदड़ माली साल लाइ 15,90,000 टन कणक जी खोट खे मूरी रही आहे। ज़खीरा अंदोज़ी सबबि ओपन मार्केट में कणक जी क़ीमत इमदादी अघ खां बि वधी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त कणक जी ख़रीदारी ज़खीरे ऐं फरामी वारे समूरे निज़ाम खे जदीद टेक्नोलॉजी सां ॻंढियो वियो।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठ समेडा बाबति इजलास नंढे कारोबार के अथी ॾियण लाइ कर्ज़नि खे आसान बणाइण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ चयो त नंढनि कारोबारनि खे अथी ॾियण लाइ कर्ज़नि खे आसान बणायो वञे, हारे न आबादकारनि खे बि कारोबार तरफ़ आणण लाइ मदद फराहम कई वञे।
1: पंहिंजी सही जी इज़त कयो, धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त ईरानी अवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। मुआदे जी शिक नंबर 13 वाज़ी आहे त धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो त हतमी मुआदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईरान जे इतिहाद जा मंज़र मां ॾिठा, घटि में घटि पंहिंजी सही जी इज़त कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी। होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तो भाई आपको इस्तेमाल करना चाहिए और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप डी स्किन फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किए गए हैं और ये जनाब जो है ना, ये बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर सेंसिटिव स्किन के ऊपर वाले लोग भी। तो अगर आप मर्द हज़रात ख़वातीन हैं तो बिल्कुल जी लगाइए और टेंशन किस बात की। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर जी स्किन फेस वॉश हो, हमारे एरिया में तो नहीं मिलता, हमारे करीबी जो है ना वो जनरल स्टोर है वहाँ से मालूमात लिया लेकिन नहीं मिल रहा, तो आपने जो है ना इस नंबर के ऊपर रब्ता करना है। ये जो नंबर अभी मैं आपको बताने लगी हूँ जरा नोट कीजिए। ओके जी, सो नंबर है 03 1579 90 595। ओके जी, नंबर आए बड़ी 315-79-90-595। ही वारो नंबर तव्हांखे डायल करणो आहे, इन नंबर ते राबितो कंदा, इन नंबर ते तव्हांखे कॉल करणी आहे या मैसेज करणो आहे। तव्हां कॉल बि करे सघो था, तव्हां मैसेज बि करे सघो था, इन्हनि खे ॿुधायो त बाबा साईं असां जेको आहे फलाणी जॻह खां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं था, ऐं फलाणी फलाणी जॻह ते जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन फेस वॉश हुजे या वरी वाइट हेयर जा प्रोडक्ट्स हुजनि, इहे अवेलेबल अञा ताईं कोन थिया आहिनि। सो अवेलेबल कराए छॾींदा, अवेलेबल करायो ऐं तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी बाबा। इस्तेमाल कयो, खूबसूरत रहो, खूबसूरतियां भई हर किसी का हक़ होती है हासिल करना, तो खूबसूरत रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाना मत भूलिएगा। अच्छा, अज मूं अमा का सवाल जेको पुछे और रिपीट कयूं था। अच्छा, तो काफी मानू एड़ा हुंदा जन असा के हाने बुधन स्टार्ट कयो तो उनन के वेलकम चऊं था। आई तमा के सवाल जेको अज मु दिनो आई हुई तो तमा फर्ज कयो तमा के केडी से का भो थिंदो आ, यानी के हर एक इंसान जिन एकडी या हुंदी आ तो उनके भो थिंदो आ के न के चीज का। आई तमा सुबह जो उठो था तमा के यो एहसास से तो महसूस से तो जे चीज का तमा डरंदा वो डर तमा जे अंदर खत्म थी वयो आ, तो पोई तमा छा कंदा।

ओके सो बहुत प्यारा यहाँ पर आप गाना सुन रहे हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों की फीडबैक्स की जाने पाते हैं। हाँ हाँ खुश थी कॉल ही नहीं बैठा मैं सुबह नहीं बैठना। ओके सो अनवर भाई की

अच्छा निदड़ी कहती है टॉपिक मेरा तो पता है तुम्हें कितनी डरपोक हूँ मैं, आइए मैं चुप बस। हाँ भाई कुछ इंसान जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ही डरपोक होते हैं, तो इतना ज्यादा डरपोक भी नहीं होना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ ऐसा मक्सी साहब के कुछ नहीं है मोकल डिनी से यानी वापस रटी आया है उसे। लियाकत अली अब्बास के हमारे साथ है, कहते आवाज भी सागे हो आए प्रोग्राम भी सागे हो पर सिदरा बदल जी वही है। अल्लाह अच्छा थे सिदरा के बुधाए थे सही। ए मंसारी कहते हैं आपका भी सेम मसला है, सच क्या है सच क्या है, हम किसको किसको माने। अच्छा सच का पता करवाते हैं आप, तसल्ली रखिए जरा। ओके एहसन अली बुगटी हमारे साथ हैं, वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं पूरा। सनावला बिरोई हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम अदी ठीक है तामदा की आयो। अच्छा अदिल कहते हैं बिना क्रीम मुखे गिफ्ट दियो न भाई, सब इते छा गिफ्ट वठन लाए बिठायो छा, कुछ पांजो भी थोड़ो खर्च कयो बाबा, वठो पान पैसन सा कुछ खबर पई। आई हां डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठो, डे स्किन फेस वॉश गड लाजमी वठो ठीक है।

भाई क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने लिस्ट में लगाया और साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, और कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइए, और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताइए। अच्छा, दर्दे दिल कहती है टॉपिक है, चिपकली और कॉकरोच से बहुत डरती हूँ, सुबह उठा तो वो अच्छा सुबह उठूं और वो खत्म हो चुका हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, बाकी कोई मुझे डरा नहीं सकता। देखो बातें इतनी बड़ी और डर किन चीजों से लगता है। अच्छा नदी कहती है फेस वॉश यूज करती हूँ मैं एंड बहुत ही अच्छा है, गर्मी में हम फेस वॉश अच्छा कहती गर्मियों में हम फेस वॉश यूज करते हैं इसीलिए डी स्किन फेस वॉश बेस्ट है, आप सब भी यूज करें। क्या बात है, देखिए भैया मेरी बात माने ना माने लेकिन निदड़ी की बात जरूर मानिएगा।

यो सही ना है बाबा। चाचा खालिद कहते हैं आप इतनी प्यारी पब्लिसिटी करती हैं प्रोडक्ट्स की कि जो नाम भी चाहे वो भी परचेज करेगा, आपके कहने से धनराशि खर्च करने से भी नहीं घबराते। भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आप धन्य हो, धन्य माशाल्लाह। आप महान है।

न इन करे असां कोन वरितीसीं, तव्हां ॾियो ई न हाणे इन करे असां कोन वरितीसीं। पर तव्हां लाज़मी जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठिजो, ठीकु आहे। इन में तव्हांखे का बि जेको आहे न इहा सोचण जी ज़रूरत न आहे त बाबा सां वठूं या न वठूं, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे हर स्किन जे मुताबिक़ तयारु थियल आहे। ऐं बाबा वॾी सभ खां वॾी ॻाल्हि त हीअ डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि प्रोडक्ट तयारु थियल आहे, यानी की को भो ई न, को ड्रप ई न।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: फकीरी नी
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमाट अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-88-5569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼु कल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं. और साथ ही साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. तो जिन लोगों ने अभी भी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद. आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया.

ओके जी, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय करियो। ये गाना जो है, इस गाने की फरमाइश हमें हमारी प्यारी कश्यप ने कर दी थी, तो हमारी कश्यप हमारे साथ मौजूद ही प्रोग्राम सुन रही हो, ये गाना उनको डेडिकेट जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जनाब आप लोगों को हम बताते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है आपकी खूबसूरती के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अभी तक आप नहीं लगा रहे हैं या फिर आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो जनाब जल्दी कीजिए, लगाइए। और कितना सोचेंगे बिल्कुल जी, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाजे आपको नतायज दे रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी जबरदस्त क्रीम है। और उसके साथ साथ

बिल्कुल जी, ये जो है ना प्रोडक्ट, ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार हुआ है, और इसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद विटामिन ई बीड्स, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन, और उसके अलावा जो है ये सिर्फ 2 रातों में आपको रिजल्ट देने वाला है। तो जल्दी से आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपने डी स्किन फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल जी, डी स्किन फेस वॉश भी आप लगा सकते हैं, और दोनों चीजें आप लगाइए। डी स्किन फेस वॉश आप दिन में 2 से 3 मरतबा लगाइए, बाकी क्रीम की बात आती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसे आप रात के टाइम लगाएंगे। ओके जी, सो अगर आप अपनी ना करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595, बुढ़ी 1599-5995। यो भी याद थी।

ओके जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना और हमारी पाकिस्तानी मूवी का गाना, इतना प्यारा गाना, आय हाय क्या बात है। और उसके अलावा एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि शमन मिराली की आवाज में होने वाला है। ये भी बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गाना, इसको भी सुनते हैं। और साथ साथ पैनल पर आपके काफी मैसेजेस जमा हो चुके हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा, मीरपुर खास अब्दुल्ला महर, अस्सलाम वालेकुम बाजी, सब सुनने वालों को सलाम, सॉन्ग सुनाए मुमताज लाशारी का, ओके भाईजान मैं कोशिश करती हूँ। कहते हैं मीरपुर खास का अब्दुल्ला महर टॉपिक, हाँ अगर मेरा डर खत्म हो गया तो मैं घर घर में मिठाई बांटूंगा। वाह साईं वाह। सफा

जी वास सही वाला डबल गाना बुधो पे ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सुठी मीठी लाइफ कीए पई गुजरे। गंबट शरीफ का अली लाजवाब आहे तमा जो प्रोग्राम। हैदर मरी, जहीर अहमद मरी, अल्लाह वदायो मरी, ताज मोहम्मद मरी और शो नाइस आए जबरदस्त। थैंक यू सो मच अली, तमा जो मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पया। और शोनी हमारे साथ ही, शोनी कहती आपी जानी। हां जी, अच्छा मेरे प्रोग्राम में ना एक ये शोनी है जो मतलब जब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होती है इन्होंने हमेशा मुख्तलिफ मैसेज किया होता है, कभी भी इन्होंने सेम मैसेज नहीं किया। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है सेम मैसेज कर देते हैं, इनका मैसेज हमेशा मुख्तलिफ होता है। कभी भी मुझे वो चीज समझ नहीं आती कल इन्होंने क्या लिखा था, आज क्या लिखा है। तो ये चीज है, डिफरेंस है इनके अंदर कि ये जो मैसेज करती ना वो थोड़ा हटके होता है, अलग लेवल का होता है, अलग लेवल का बंदा है भाई, आई मीन बंदी है। ओके सो थैंक यू सो मच हमारी शोनी गोट हाजी गुलाम खास के लिए, खां कुर्बानली खास के लिए, अलग नो जुने जो सोनी सूरत वारा मानो प्ले करियो। सलाम खालिक लाशारी गुलाम रसूल मरी। ओके भाजो मैसेज इस ताई हुयो सो मोहब्बतु आइन भाजो। और हमारे साथ ही प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद आबाद, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। सलाम टू पाक आर्मी, स्वीट शो, प्लीज दीबा सहर का कोई भी सॉन्ग सुनाएगा आप अपनी पसंद का, प्ले कीजिएगा। ओके आई विल ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ। जुलरी का खालिक लाशारी अदी माँ, माँ कूड़े माणो का ड्रप खाई दो आए। हाँ वाह वाह वाह, देरी है सऊ देरी है फ्रॉम नवाब शाह। सलाम अदी शो तुम्हारा नाइस आए मोहब्बतों प्यारे भाजू। और ये हमारे साथ है मेरी छोटी बहन कुलसूम, मेरी माँ से डरती है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। शहबाज जमाली हमारे साथ है, वेलकम करते हैं भाई को। ओके जी, मायरा भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया जी जो लोग हमारे साथ पैनल पर मौजूद होते हैं।

0: हर पल।
1: ओके जी, बहुत ही सोना सा गाना सुन रहे थे। एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। और हमारे साथ हैं उदास लड़की, कहती हैं जानवरों में से मुझे सबसे ज्यादा डर सांप से लगता है, हद से ज्यादा डरती हूँ उससे। अच्छा, क्या बात है जी। और फहीम कहते हैं ओके, गाने आपको पसंद आ रहे हैं। बख्त अली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो भाई जान। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज नोट करी होगी, जो लोग खुद की भी नहीं मानते वो मेरी बातें मानते हैं। स्वैग है भाई।

अच्छा दर्द दिल आप जो गाना बोल रही ना वो गाना मुझे समझ नहीं आ रहा जरा, पता नहीं कौन सा गाना है ये, तो थोड़ा सा आगे बताइए आगे क्या है गाने में ताकि हम प्ले कर सके। ओगरी सासत आप यहाँ पे शो सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से।

सजाद अली जमाली नवाब शासी हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम करते हैं। और एम अंसारी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम मिले जब से बचपन में ले गई ये सॉन्ग तो। हाँ भाई, ये गाना वाकई बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत है। इस गाने को जितनी भी जनरेशन आएंगी ना, सारी सुनेंगी, उन सबको ये गाना अच्छा लगेगा। और बिलाल कहते हैं कि अपनी जहनी सुकून के लिए तीन चीजें कम रखें, अल्फाज, ताल्लुकात और लोग। एग्जैक्टली

अच्छा गुल यासीन नाज हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद जमान भाई थोड़ा सा खर्चा कीजिए जी, जी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए। अच्छा फहीम शेख कहते हैं कि सत्या दुकानदार भी ज्यादा होशियार है, डी स्किन मांगने जाते हैं तो एक और क्रीम भी दिखाते हैं। बिल्कुल दुकानदार जी की ना वड़ा चालाक हुंदा था वाला इन मामले में, या चीज मां भी नोटिस कई आए। अगर तमन का कोई प्रोडक्ट वठना ना उनन वटू प्रोडक्ट नऊ दोना चांदा बाबा ही जेको कस्टमर आयो आ यो खाली हथ ना वने ना कोई चीज त पकड़ाए सजो। सो ता भी सफा पक्को पह करी वने त असा के वणणो आ दुकान दे त सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करनी आ, आई डी स्किन फेस वॉश वठणो आ। अगर वो प्रोडक्ट ना त ता उनके चो भाई साहब ही प्रोडक्ट अवेलेबल करायो भलो न थींदव। सो तव्हां ज़रूर डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻाइजो, जीअं तव्हां सोणा थी वञो, ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहे।

अच्छा पको पर मतलब हिकड़ी गाल जेके तमा चो त बस हिया करणी आ सो करणी आ तुझ में ही ओने के चेबा पको पर। अच्छा बिलाल कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मुझे देखने के लिए इस धरती पर तुम्हारी दो आंखें सलामत हैं। वाह अच्छा जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम जबरदस्त आए तमाम जो सबनी दोस्तन के सलाम सो वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई दो घंटे कैसे गुजरते हैं। नहीं गर्मी कुछ ज्यादा ही है तो ऐसी जिंदाबाद। किशोर भाई कहते कयो बाबा कयो बीहर वफा पो बीहर बर्दाश्त भी कजो। नहीं वो जो बर्दाश्त होता है ना वो नहीं हो पाता सो इसीलिए इरादा कैंसिल करते। अच्छा वफा शहजादो मक्सी भाई ऐसा से गड मौजूद आए भाजू मोहब्बत वाइन एसन कहते हैं गाल समझ में ना आई। ओके सो असांजे वञण जो टाइम बिल्कुल करीब अचे पहुतो आहे। जी बिल्कुल मैं अभी जाऊंगी और 5 बजे दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी तो मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिएगा।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। और उन खां अलावा जेको शोनी तवाजो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया वरी सला तवा से मुलाकात मुझे थे पई बाबा 5 बजे खां 6 बजे ताई वाली प्रोग्राम में। ठीक है, सो ते मके जॉइन कजो ए पांजो ओ हेडो सारो ख्याल रखना आई किथे का गलती थी हो जे को ओडो लव्स गाले जेको तवा के सुठो न लगो तो न लाई माजरत कयूं था। विंदे विंदे भी ताके चवंदी वेनम त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो जे या डी स्किन फेस वॉश हो जे व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हो जे व्हाइटिश लवली क्रीम हो जे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब हो जे व्हाइटिश साबुन हो जे या वरी फेस वॉश हो जे ही सब चीजों तवा जे खूबसूरती जलाए आहन तवा जे स्किन के बेहतर बनाना जलाए आहन। सो तवा इनन के ट्राई करी दिसो, ट्राई करनो मा छाई वेदो। सो ट्राई करी दिसो पंजे प्यारन के भी दस दियो तो हु भी लगाएन। इन का अलावा खूबसूरत रहो आई खिलंदा रहो मुस्कुराईंदा रहो पानी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कयो आई वरी मिलूंगा 5 बजे। सो मोकलानी नाही बाबू सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हमलन लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल ते गलिए जो इजहार। अफगान तालिबान रिजीम खां पो पाकिस्तान खिलाफ पांजे सरजमीन जो इस्तेमाल करण जो मुतालबो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थींदड़ अफगान इलाकायन में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई जारी रखण जो फैसलो। फोरम चयो आहे त दहशतगर्दी सबब मुतासिर थींदड़ इलाकन में गवर्नर्स जो बेहतरीन निज़ाम जोड़ियो वञे, जेको सियासी पुठभराई सां थींदड़ दहशतगर्दी ऐं ॾोहन वारी गठजोड़ खे टोड़े। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोर कमांडर्स खे जंग जे थींदड़ तब्दील थींदड़ किरदार मूजिबि मिलिट्री डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ते अमल तेज़ करण जी हिदायत कंदे चयो त पाकिस्तान जी सलामती ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो हर क़ीमत ते तहफ़ुज़ कयो वेंदो।
2: भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के आवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक कोस्ट तक के जो आवाम, हम इसका दिफा करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के आवाम तैयार है। मरसू सिंधु ना देसू, इसका मतलब है मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
1: मोदी बुद्धि छड सिंधु तास मुआदे ते ठा न कंदासी, सिंधु दरिया जो दिफा कंदासी, जंग वेणी पई त विढ़ंदासी, तुझे हर साज़िश के नाकाम बणाईंदासी ऐं कामयाब थींदासीं। गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जी हलफ बरदारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी। भारत खां शिकस्त हज़म नथी रही आहे, भारत हाणे इसराइली मॉडल इख़्तियार कयो आहे। मोदी अफ़ग़ानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो। पाकिस्तान जो आम मुतहद आहे, दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो। जीबी में आवाम से कल वायदा पाड़ींदासीं।
3: दहशतगर्द मार जी बिहार केतरा ही जख्मी। दहशतगर्दन से विढ़ंदे नव अहलकार शहीद। बलूचिस्तान हुकूमत जो तर्जुमान शायद रिंद चयो आहे त भारत जी सरपरस्ती में कम कंदड़ दहशतगर्द पुलिस ते हमलो कयो। फोर्सिस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 15 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दन सां विढ़ंदे बिन एसएचओ समेत नव अहलकारन शहादत माणी।
4: खानपुर महर वेझो ब मासूम निंगरियूं वाटर कोर्स में बुडी फोत। गोठ इस्माइल पिताफी में 10 वरियन जी अजवा 8 वरियन जी सबाणी पिताफी बुडी फोत थियूं।
3: तलार में मीरबा केनार में पानी कोट खिलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख रोड से धरणो, आबादगार एहतजाजी मुजाहरों कर हैदराबाद बदीन रोड से धरणो हयो। घोटकी में कादरपुर माइनर वट 1 & 2 के आबादगारों जो पानी कोट खिलाफ़ सीधा ऑफिस आरो धरणो। पानी चोरी रोके पानी फराम करण जो मुतालबो।
4: नसरपुर में मीरपुर खास जेल में फोत थियल कैदी के वारसन जो लाश रखी धरणो। फोत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ टालपुर के वारसन टंडो अलियार रोड से लाश रखी धरणो आयो। वारसन जो चवण है त असाजे हमरा के फारूक टालपुर बेन दुश्मनी ता कूड़े केस में फासाए मारायो आहे। जवाबदार की गिरफ्तारी ताईं एहतजाज जारी रहंदो।
3: सिंध में मुख्तलिफ नौकरियों लाइ टेस्ट पास करण उम्मीदवारन जा एहतजाजी मुजाहिरा। लाड़काने में अरली चाइल्डहुड टीचर की नौकरी लाइ टेस्ट दींदड़ औरत उम्मीदवार जो एहतजाज। दादू में मास्तरी लाइ एनटीए टेस्ट पास उम्मीदवार मुजाहरों कयो। पनियाकर में जेल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लाइ दरख्वास्त दींदड़ नौजवान जो एहतजाज। उम्मीदवार जो चवण है तो लगातार एहतजाज बावजूद कें भी नोटिस ना वरतो। महंगाई ए बेरोजगारी सबब परेशान आयूं, आर्डर डेई बेचैनी खत्म कई वे।
4: नारो वेझो महमान थी आयल नौजवान के खट सां बधी तशद्दुद वीडियो वायरल। गोठ अताउला पिहार में नौजवान कामरान जिस्कानी ते तशद्दुद कयो वियो। ज़रीन जो चवण आहे त नौजवान ठरी मीरवा जो रहवासी आहे जेको नसीबुला जिस्कानी वटि आयल हो। पुलिस मूजिब मुतासिर नौजवान तोड़े संदसि वारिस मां केर बि थाणे ते नाहे आयो। वीडियो डिठी आहे। इल्ज़ाम हेठ आयलनि खे हथ करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे। मुतासिर ईंदा त केस दाख़िल करण बाद वधीक कार्रवाई कंदासीं।
3: शाम जी राजधानी दमिश्क में फ्रांसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी दौरान धमाका, 18 जणा जख्मी। परडी मीडिया मूजिब मैक्रोन के होटल पारा ब धमाका थियान। धमाका मैक्रोन के होटल में वन बाद थे, जिन नतीजे में 18 जणा जख्मी थे। सदर मैक्रोन महफूज रहो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई 12 इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।

0: एक आदमी दो बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभल रहा था। उसके कांधे पर एक बेटा था जमीन पर खड़े। तमाम लोग दम साधे यकटिक उसे देख रहे थे। अब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी, उसकी खूब तारीफ की। उसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला, क्या आप लोगों को यकीन है कि मैं वापस इसी रस्सी पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? लोग चिल्लाकर बोले, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आपको भरोसा है? लोगों ने कहा, हम तुम पर शर्त लगा सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, क्या आप में से कोई भी मेरे बेटे की जगह मेरे कांधे पर बैठेगा? मैं इसे बाहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सबको सकता हो गया, सब खामोश हो गए। यकीन अलग चीज है, भरोसा अलग। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फना होना पड़ता है, और आज हम सब में इसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। थिंक अबाउट इट, एम आई राइट और रॉन्ग? वंस अगेन वेलकम कहेंगे अपने तमाम सामेईन को जी अमीरपुर खास एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम ऑन एयर है, सब दोस्त हमारे। और जनाब आज का टॉपिक है, मैंने आपसे पूछा है कि सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है, मोहब्बत, साथ, पैसा, वफादारी या फिर दुआएं? और ये बात हमें बताने के लिए डायल करना है आपने 03136615688। SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। आपकी कॉल्स की जानी मूव करते हैं और जानना चाहते हैं हमारे लिसनर्स की क्या राय है आज के टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, मेनमा गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काचड़िए का पे गला
0: जी। अदा क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
1: पैसे का सवाल पेट्रोल की तरह पैसों लाजमी है।
0: ठीक है जी, ओके। दोस्तों को याद कर लें?
1: दोस्तान कुर्बान खास के लिए था, अभी जरवाला साल की लाश चाह रही है यार, मोहम्मद सोलंकी का जेके प्यारा तो।
0: ठीक हो गया, ओके जी, बहुत शुक्रिया। और आपने हमें बताना है सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलामती,
0: वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
2: कुर्बान अली खास के लिए बनाया, गोताज गुलाम खास के लिए झंडो मरी जान।
0: क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
2: पैसों जरूरी है मोहम्मद जिला, पैसों हो तो डाल डाल अली सके लिए पैसों से तो कुछ ना है।
0: ठीक हो गया, ओके। और दोस्तों को जी जी जी बताइए, दोस्तों का ही तो नाम लेना है आपने, बताएं।
2: असल में चारों दोस्त है, उस्ताद काठड़ी का गुलाम रसूल मैया, आयनो का आपको खालिक लाशारी अली सलगी आए अजीज लाशारी पे चेक के दोस्तों उधर का खालिक लाशारी।
0: चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है, टॉपिक को समझा करें, देन कॉल पे आया करें। आपको कॉल पे आने की इतनी जल्दी होती है, आप टॉपिक को बिना समझे जो है हमें ज्वाइन करते हैं, तो उससे आपका जो रिप्लाई आ रहा होता है वो गलत आ रहा होता है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, अभी जिलूरी का खाने क्लाशारी कराएंगे।
0: क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में? सब नहीं पा रहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और खालिक लाशारी लाइन पर थे। सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है? अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम,
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है? अदा अजीज, सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है, ब्यूटीफुल गिफ्ट क्या है?
4: दुआ, दुआ।
0: चले ठीक हो गया, आपने भी जो है अपना जो है ऑप्शन सिलेक्ट किया है। दोस्तों को याद कर लें,
4: गुलाम रसूल मरी है, अजीज सोलंकी है, खालिक कलाशारी है, यार।
0: ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका सबकी जानिब से। वालेकुम अस्सलाम, सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है, ब्यूटीफुल गिफ्ट? अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे भाई, आपको क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
5: टॉपिक के हवाले से बिल्कुल दुआ जरूरी है।
0: ठीक है, दोस्तों को याद कर लें। जनाब आज आपसे पूछा है सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, चलिए जी, मुझे वॉइस नहीं आ रही थी आपकी, कॉल कट कर दी मैंने, बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो अगेन कॉल कर सकते हैं। आई डोंट नो कौन था हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन बात कर रहा है? ویلکم کہیں گے آپ کو. سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے؟ محبت، ساتھ، پیسہ، وفاداری یا پھر دعائیں؟ جی چلیں کوشش کریں گے آج ممتاز لاشاری ضرور سنائیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے؟ السلام علیکم.
6: السلام علیکم
0: یاسمین. ویلکم. سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے؟
6: سب سے خوبصورت تحفہ محبت ہے. آپ کے ہم کسی کو کوئی چیز نہ بھی دیں محبت سے بات کریں گے کافی.
0: چلیں ٹھیک ہو گیا یاسمین. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. اللہ حافظ. سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بیوٹیفل گفٹ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
7: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب. ویلکم کہیں گی. کون بات کر رہا ہے؟
7: جی میں فرح بات کر رہی ہوں میر پور سے.
0: فرح سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے؟
7: دعائیں.
0: دعائیں چلیں جی. بہت شکریہ فرح. تھینک یو.
7: آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ بھی مجھے اچھی لگتی ہیں.
0: تھینک یو فرح. آپ خود بہت پیاری ہیں اس لیے آپ کو سب اچھے لگتے ہیں. تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن
7: کیا. سوری
0: کون سے ڈرامے کا؟
7: دراز.
0: دراڑ. اوکے چلے میں جی جی چیک کروں گی. اگر موجود ہوا ضرور سنائیں گے آپ کو یہ والا گیت. اوکے جی اللہ حافظ. ایسے عجیب و غریب نام ہے ڈراموں کے. اوکے ڈراما ہے نام تو ہوں گے. اوکے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
8: ہلو
0: السلام علیکم.
8: ہلو
0: بھلی کار چاہوں تھا تماں کے جی. مجھے چھوڑے میری تیاری کو بھی چھوڑے مجھے ٹاپک کا بتائیں. سب سے خوبصورت تحفہ کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. دوستوں کو یاد کریں گے آپ؟
8: ہلو
0: جی جی سن رہی ہوں فرمائیے. ابھی
8: دوست قربان علی قاسم کے لیے غلام رسول مری ہے جا کے مجھا بھائی رے بہنوں جے کے انگلا تو مسجد ان سب نی کے سلام
0: سب نی پارا. وعلیکم السلام. مہربانی ادا تماسا کے جوائن کیو اور دوستوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں. یہاں پر جو ہے بریک ٹائم ہے تو بنا وقت ضائع کیے چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتے ہیں اور اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ڈونٹ گو اینی ویئر. اسٹے ٹیون. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک. ان کی آواز

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3885-69।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: पहले मतलब मुझे याद है कि एक रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये हुकूमतें छोड़ देते थे, अभी 200 रुपए भी बढ़ गई तो वो वैसे के वैसे रहे। अभी भी ये उनका, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल स्टंट है। ये बयान भी MQM का कि हम वफाकी हुकूमत वफाकी काबिना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस की एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए। बाकी फारूक सत्तार साहब की आपको पता कि MQM में खुद अपनी कितनी से उनकी इस वक्त MQM में, तो उनकी बात को इतना ज्यादा आप ध्यान से ना दिया करें। काम आज
2: सीएम कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें और आपने चीजें बताई, दो तीन इश्यूज चल रहे हैं सिंध में जो करप्शन से रिलेटेड है। एक तो आपके जो म्यूनिसिपल लेबर है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि उनके इदारे बनकर करके बोर्ड में कोई 20 अरब रूपये की करप्शन हुई है, क्या वो उस पर कोई बात हुई, या जो एक VRT के सिस्टम में एक अरेस्ट भी हुई है हमारे यहाँ कहते हैं 7-8 अरब रूपये की उनके लिए पैसे दिए गए लेकिन वो अब तक बने नहीं है, तो क्या इन करप्शन से रिलेटेड इश्यूज पर कोई बात हुई है कैबिनेट
1: में? कैबिनेट में सही कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं बात कर देता हूँ आपको जो आपने बात की। जहां तक बात की आपने लेबर की, तो लेबर मिनिस्टर एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक निशानदेही की, उन्होंने कई खिताब किया, उन्होंने जुडिशरी पे वो बात कर रहे थे कि जी जिन लोगों को उन्होंने उनकी नजर में उनके महकमे में कोई गलत बात हुई और उन्होंने कुछ लोगों को हटाया और लोगों को वो लोग शायद स्टे लेकर आ गए, तो उसमें वो जो मिनिस्टर लेबर है वो उनको एड्रेस कर रहे थे। जहां तक आपने बात की इसकी येलो लाइन बीआरटी की जो है उसमें एक इरेगुलरिटी हुई, कॉन्ट्रेक्टर को एडवांस पेमेंट दी गई, जब हमने उस पीडी को हटाया तो उसके बाद एक दूसरे पीडी जब उसको रखा उस पीडी ने निशानदेही की कि जी यहां पे एज पर कॉन्ट्रैक्ट पैसे नहीं दिए गए, उससे ज्यादा पैसे दिए गए हैं, 7.5 अरब रुपए की पेमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा होकर दी गई। तो जैसे मुझे उन्होंने बताया तो मैंने इमीडिएटली वो पूरे अपने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भेजा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया और फिर हमने राइटिंग में लेटर लिखा, उसके बाद हमने राइटिंग में लेटर लिखा कि जी ये इस तरह की चीजें हुई, इस पर गवर्नमेंट एक्शन ले, फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन लिया, उस शख्स को गिरफ्तार किया। तो ये आप देखेंगे अगर कहीं पे कोई इस तरह की चीजें हो रही तो हुकूमत खुद जो इंटरवीन कर रही है और हुकूमत खुद एक्शन ले रही है, तो आप देखें कि जी जो हुकूमत खुद उस पर एक्शन ले रही है, हुकूमत खुद इंटरवीन कर रही है। जहां पर आपने तीसरे मुद्दे की बात की उस पर मिनिस्टर साहब ने बताया कि
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569, 0300-338-5569।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर, राबते जे लाइ 0320-18-00-003।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जिंदगी की लहर GFM गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 5 p.m. This
1: नाम लेकर तलब करें।

0: बड़े वजीर मुआदल शाहजी सदा।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
0: सिक्योरिटी सर्विसेज नाले नौ इदारों ठहराने का फैसलो। सूबे में नयन शुगर मिल्स के क्याम की भी इजाजत न दिनी वी। बादल शाह चाहे तो खुराक खातों पॉलिसी ठाने निगरानी कर गजाई तहफुज से ध्यान दई अटे जो कीमतों मुस्तकम कर कार्रवाई कई वे। जखीरो कंदड़न हारियन खां कणक वठी लिकाए छदी आहे। कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ बिना मतभेद जे कार्रवाई थींदी। खुराक खातो सिंध पुलिस ऐं बियन इदारन सां गॾिजी कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई कंदो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद जी सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग। खुराक वारे वज़ीर मख़दूम महबूब ज़मान चयो आहे त वफ़ाक़ी सरकार जी कणक पॉलिसी सां मुतफ़िक़ नाहियूं, सिंध पंहिंजा फ़ैसिला कंदी। सिंध में कणक जे हथरादू खोट पैदा कई पई वञे। कणक रुगो खाइण जेतिरे ज़खीरो करण जी इजाज़त आहे, बाक़ी कंहिंखे बि कणक ज़खीरो करण जी इजाज़त न हूंदी। ज़रात वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श महर चयो त माहौलियाती तब्दीली सबबि कणक जी अपत घटी आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प नेटो सरप्राइज इजलास में शिरकत लाइ तुर्किया पहुची वियो। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान अंकरा पहुचण ते अमरीकी सदर ट्रम्प जो आदर भाग्यो।

पंहिंजी सही जी इज़त कयो, धमकियूं जारी रहियूं त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरानी अवाम खे फ़ौज खे धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघजे। मुआदे जी शिक नंबर 13 वाज़े आहे त धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो हो त हतमी मुआदे बाबति ॻाल्हियूं शुरू न थींदियूं। लखे ईरानियुनि जे इतिहाद जा मंज़र अवां ॾिठा, घटि में घटि पंहिंजी सही जी इज़त कयो। तेहरान खां कुम पहुचायल शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मर्ज जो आख़िरी रस्मूं शुरू। आयतुल्ला जोबदी आमली शहीद आयतुल्ला खामनाई जी जनाज़े नमाज़ पढ़ाई। कुम में आख़िरी रस्मूं मुकमल थियण बाद शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मर खे इराक मुंतकिल कयो वेंदो, कुम में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सां। किर्गिस्तान जे दौरे ते मौजूद सदर आसिफ अली सरदारी जे मान में तकरीब। सादिर जियापा रऊफ सदारती बहल पहुचण ते सदर आसिफ अली सरदारी जी आजियां कई। सदर आसिफ अली सरदारी खे गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश कयो वियो। सदर आसिफ अली सरदारी जी किर्गिस हम मनसब सां मुलाक़ात, बि तरफ़नि लाॻापनि ऐं वापारी सहकार खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़।

बे टैक्स जो बार घटायो आहे। ईरान सां वापारी लाॻापनि में मस्बत अगबराई थींदी। बलूचिस्तान जे शहर ज़ियारत में हथियारबंदनि जी पुलिस चौकी ते हमले बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे नव अहलकार शहीद। बलूचिस्तान हुकूमत जे तर्जुमान शाहिदन चयो आहे त भारत जी सरपरस्ती में कम कंदड़ दहशतगर्दनि पुलिस ते हमिलो कयो। फोर्सेस जी जवाबी कार्रवाई जे नतीजे में 15 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे ॿिन SHO समेत नव अहलकारनि शहादत माणी। खानपुर बहर वेझो बमासूम निगरियूं वाटर कोर्स में ॿुॾी पहुत। घोट इस्माइल पताफ़ी में 10 वरियनि जे अजवा ऐं 8 वरियनि जी सबाणी पताफ़ी ॿुॾी पहुतियूं।

नसलपुर ने मीरपुर खास जेल में फौत थियल कैदी के वारिसन जो लाश रखी धरणो। फौत थियल कैदी मोहम्मद यूसुफ तालपुर के वारिसन तंदोलिया रोड से लाश रखी धरणो हो। वारिसन जो चवण है असा के हमराह के फारूक तालपुर बेन दुश्मनी तक कूड़े केस में फासाए मारा है। जवाबदार गिरफ्तार कर वाले

सिंधिया मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि लाइ टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि जा एहतजाजी मुज़ाहिरा। लाड़काणे में अर्ली चाइल्डहुड टीचर जी नौकरी लाइ टेस्ट ॾींदड़ औरत उम्मीदवारनि एहतजाज कयो। दादू में मासरी लाइ NTS टेस्ट पास उम्मीदवारनि मुज़ाहिरो कयो। पन्ने अखिल में जेल पुलिस कॉन्स्टेबल जी भर्ती लाइ दरख़्वास्त ॾींदड़ नौजवाननि जो एहतजाज। उम्मीदवारनि जो चवण आहे त लगातार एहतजाज बावजूद कंहिं बि नोटिस नाहे वरितो। महांगाई ऐं बेरोज़गारी सबब परेशान आहियूं। ऑर्डर ॾेई बेचैनी ख़तमु कई वञे। नारोवे जो महमान थी आयल नौजवान के खट सां वधी तशद्दुद। वीडियो वायरल। घोठ अताउला पनियार में नौजवान कामरान जिस्कानी ते तशद्दुद कयो। ज़रिए जो चवण आहे त नौजवान ठरी मीरबा जो रवासी आहे, जेको नसीबुल्ला जिस्कानी वटि आयल हो। पुलिस मूजिब मुतासिर नौजवान तोड़े संदसि वारिसनि मां केर बि थाणे ते नाहे आयो। वीडियो ॾिठी आहे। इल्ज़ाम हेठि आयल खे हथ करण लाइ पुलिस खे मोकिलियो आहे। मुतासिर ईंदा त केस दाख़िल करण बाद वधीक कार्रवाई कंदासीं।

0: में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320472
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मजे दुकान जी बेड हरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजे एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसका
3: डिग्री कॉलेज हालाणी

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उन्हन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते ले 0301 9196151।

0: दोस्तु व्यूज़ अव पहुँचाईंदे जे मौजूद आन छो जो जो मूल सेहतमंद यकीन उनकी भी ख्वाहिश हूँ वह पा भी चवंदा तो असा अल्लाह ताला तरफा शिफा मिली है तो जी बन के अवं यो नोट करायो बुधायो तो जी असा असो मैसेज बन तीन पहुंचे तो उ भी जो सो उन फायदो हासिल कर अचो तो उनका व्यूज़ बुध हूँ
1: साल थी विया जी मुख्तलिफ किथा किथा इलाज
2: कराए
1: जी लाड़काणो मेरापुर चमड़ी के डॉक्टर के तुम दिखारियो डॉक्टर
0: समझा तो डॉक्टर साहब असा वो जो है असल में पियल है उनते नेट ते पियल है एफ बी ते पियल है इन जे करे वो इंटरनेट सिलो जे करे मसलो पेश अचे पियो प्रोग्राम है सेहत जी गाल प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूद हैं जी सेहत बाबत जान दे रहा मालूम दे रहा है तुम असाजे प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 0301 196 8051 0301 196 8051

0: जी जी हुकुम कयो भा।
1: भा चेल में सूरा न जको थे।
0: अच्छा घणो वसो थियो आ?
1: हैं
0: वजन वजन खयो होंदो?
1: वजन वजन ना खयो।
0: अच्छा ठीक आ, कथो पियो गलाई जतो ही
1: कच्चे खा।
0: अच्छा कच्चे खा, पो डॉक्टर साहब के रूबरू दिखारे वन या वरी डॉक्टर साहब बुधावई दो। ठीक आ, एफएम बुध, एफएम बुध डॉक्टर साहब बुधावई दो।
1: जी जी
0: जी डॉक्टर,
2: बिल्कुल जैसे तकलीफ है तो फिलहाल हेड तेल चढ़ने जो जो सो तेल सर में हेड मिलाए गर्म करें वो लगाने की मालिश न कर, लगा छ अला कह फर्क पैजी बाकी जैसे फिर भी फर्क न पे तो रूबरू दिखारे सको।
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल छे मेरा पर एफएम 94 जो ही आवाज़ तुम समात नहीं पहुंचे पो। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असो स्टूडियो मौजूद 0301-8191 असो लाइव कॉल जो नंबर है। कॉल की तरफ इंदासी दिसो के थानो कॉलर होंदो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम साईं, खुश आयो?
0: दुआ अलहमदुलिल्लाह। केर साहब पियो गलाए मुंजा साईं?
1: साईं शौकत बामण पियो गलाए आचर गोठ बामण खां।
0: जी जी अदा भले का चों था, छा पुछंदा भा डॉक्टर साहब खां?
1: डॉक्टर साहब खां यो पुछना सी हमरा के गोडन में सूरा डाडो।
0: अच्छा तवा के पान के या हमरा के?
1: वडो आ हमरा पी आ उन के।
0: अच्छा उमर घणी दज?
1: उमर तकरीबन 65 साल ला जी आ।
0: को मसलो ही कोने को, अल्लाह ताला जी जात शिफा देण वाली आ। ॿी जॻहि तव्हां बि इलाज करायो हूंदो पर तव्हां डॉक्टर साहब खे रूबरू ॾेखारियो, इलाज करायो, इनशाला रिज़ल्ट मिलंदो, फ़र्क़ु मिलंदो बाक़ाइदगी सां। ठीकु आहे भाउ, वधीक एफएम ॿुधो। डॉक्टर साहब तव्हां खे ॿुधाए थो, हर जुमो छंछरु आचर हफ़्ते जा टे ॾींहं चेकअप फीस डॉक्टर साहब जे तरफ़ां फ्री हूंदी आहे। तुंहिंजे बांभणनि जे ॻोठ जा इलाही इहो सियाल इहे ठरी जा ख़ासि कयल जाम पेशंट हूंदा अथई डॉक्टर साहब वटि, इन ई जोड़नि गोॾनि जे सूर जा مختلف مانو شر جام ہوندا تھئی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا با ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
2: جی سر بالکل ایکڑی جکو ہے سو بیماری جنے تھی ونے تھی تپ پیشنٹ جکو ہے تکلیف میں اچ ویندا اڑے طریقے سان جوڑن جی بیماری بھی میں بھی جکو ہے سو پیشنٹ گھنا وری پو مالش وغیرہ گھنو کرائی نہ ہن تے یا ان کے جکو ہے سو یا زیادہ تر जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जा पेशंट जिन जे घुटननि में जिन जी गोॾनि में जेको आहे सो मिख हूंदी आहे हिकिड़ी जेकी घटिजी वेंदी आहे, गैप अची वेंदो आहे, पोइ उहे अॻिते हली जेको आहे सो गोॾा पाण में जेको आहे सो टकराइबा आहिनि ऐं पोइ भुरभुरी वेंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे इहो ई कोशिशि कंदासीं ॿुधाईंदासीं त जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी त उन में डराई बिल्कुलु न कनि ऐं क़रीबी कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारनि। ऐं बहितर ईअं ई आहे त उनखे हिकु त जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जे पेशंट में वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, छो जो असांजो प्रोग्राम बि अवेयरनेस जे हवाले सां आहे त वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे एहतियात। एहतियात इहो ई आहे त मालिश नाहे करणी, ओकड़ू नाहे विहणो, वज़न ज़्यादा नाहे खणणो, ॾाकणु जेको आहे सो नाहे चढ़णी, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो यकदमि जेतिरो थी सघे त इलाज जेको आहे सो कराइणु। इलाज असां वटि घणो ईअं थींदो आहे त घणा वञी गोॾनि में सुयूं हणाईंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो मालिशूं कंदा आहिनि या अदरवाइज़ ॿियो ट्रीटमेंट, त पोइ उन में वरंदो गोॾा जेको आहे सो वेही वेंदा आहिनि। इन जे करे इहो या कुझु कार्टिज़ोन दवाऊं अहिड़ियूं इस्तेमालु कंदा आहिनि जंहिंजी आदत पइजी वेंदी आहे, पोइ जेसिताईं माण्हू उहा दवा गोरी न खाईंदो आहे त सूर न छॾींदा आहे, पोइ उनजो नतीजो इहो निकिरंदो आहे त अॻिते हली उहे गोॾा जेको आहे सो सुॼी वेंदा आहिनि ऐं जंहिंजे जोड़नि में ईअं थींदी आहे त उन्हनि जा जोड़ जेको आहे सो टेढ़ा थी वेंदा आहिनि, हॾियूं टेढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ उहे जेको आहे सो ॿियूं बीमारी में मुबतला थी वेंदो आहे। इन जे करे अहिड़े क़िस्म जी बीमारी में जेकॾहिं पेशंट थिए थो त असां वटि उनजो ट्रीटमेंट मौजूदु आहे ऐं रूबरू ॾेखारे सघूं था।
0: दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-8191।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: न्यूज़। नेटो ईरान खिलाफ जंग में असांजी मदद न कई। जंग खत्म थियण खां पोइ बरतानवी वज़ीर आज़म मदद जी आछ कई। नेटो इजलास में अचण जो मूड न हो। तुर्किया जी मेज़बानी सबबि हिते आयो आहियां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे। ॿियनि मुल्कनि जी भेट में तुर्किया अमरीका सां वधीक वफ़ादार रहियो। अमरीका सां त यूरोप खे रूस खां बचायो आहे। यूरोपी मुल्कनि खे बचाइण लाइ ईरान जी एटमी सलाहियत खे ख़तम कयो। तुर्किया मुंहिंजे करे इसराइल जंग ख़िलाफ़ जंग में शामिल न थियो। तुर्किया चाहे हा त इसराइल जंग में शामिल थी पई सघियो। तुर्किया मज़बूत ऐं वॾी फ़ौज रखंदड़ मुल्क आहे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान चयो आहे त अमरीका खां F-35 वेड़ाक जहाज़ वरिता वेंदा।

0: कालम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान खिलाफ जंग में असांजी मदद न कई। जंग खत्म थियण खां पोइ बरतानवी वज़ीर आज़म मदद जी आच कई। नेटो इजलास में अचण जो मूड न हो। तुर्किया जी मेज़बानी सबबि हिते आयो आहियां। तुर्क सरदार रजब तैयब एर्दोगान मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे। ॿियनि मुल्कनि जी भेट में तुर्किया अमरीका सां वधीक वफ़ादार रहियो। अमरीका सां यूरोप खे रूस खां बचायो आहे। यूरोपी मुल्कनि खे बचाइण लाइ ईरान जी एटमी सलाहियत खे ख़तम कयो। तुर्किया मुंहिंजे करे इसराइल जंग ख़िलाफ़ जंग में शामिल न थियो। तुर्किया चाहे हा त इसराइल जंग में शामिल थी पई सघियो। तुर्किया मजबूत ऐं वॾी
2: Pasta or Gibbs recipe mix se daale apne khano mein jaan.
3: Gibbs pasta.
4: Pure 50 rupaye ki bachat ke saath Lifebuoy shampoo, kudrati mazbooti ka new look.
5: Isme hai high quality PC, 5 saal ki warranty ke saath.
6: Royal Water Facts, saath zindagi bhar ka.

अमित शाह दा डोनाल्ड ट्रंप जो सरप्राइज इजलास का पहरी नेटो ते तनकीद ईरान खिलाफ जंग में शामिल न थन ते मयारू भी दिनियो तुर्क पहुंचण ते सदर रजब तैयब एर्दोगान पारा सदर ट्रंप जी आचिया तोपन की सलामी भी दिनी वही। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश मीडिया से गल के डोनाल्ड ट्रंप चयो ता नेटो ईरान खिलाफ जंग में असांजी मदद न कई। जंग खत्म थियण खां पोइ बरतानवी वज़ीर आज़म मदद जी आछ कई। नेटो इजलास में अचण जो मूड न हो, तुर्किया जी मेज़बानी सबब हिते आयो आहियां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुझो सुठो दोस्त आहे। बेन मुल्कन जी भेट में तुर्किया अमरीका सां वधीक वफादार रहियो। अमरीका सदर यूरोप खे रूस खां बचायो आहे। यूरोपी मुल्कन खे बचाइण लाइ ईरान जी एटमी सलाहियत ख़त्म कयो। तुर्किया मुझे करे इसराइल जंग खिलाफ जंग में शामिल न थियो। तुर्किया चाहे हा तो इसराइल जंग में शामिल थी पे सको। तुर्किया मजबूत ए वी फौज रखदड़ मुल्क है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान चयो है अमरीका खां F-35 वेड़ाक जहाज वरता वेंदा।

0: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर की।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: इट्स 8:15 PM।
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर नियाजोशो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: असलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हाँ अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
4: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-5769।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00003।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
1: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।